रविधारी अच्छी समय गहर्ज का साथ हुई इंटरनेट ऑनलाइन को www.rividharing.org मार्फत संसार भर के साथ प्रसारण भइरहेको बिहान 7:45 बजे को खबर में ब्रेक को नमस्कार खबर को शुरू में मुख्य

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम टेक अहिले ठीक 8 बजेको छ
1: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टेक द डिफरेंस फील द एनर्जी
2: रेडियो धादिङ समय संकेत
3: अहिले बिहानको 8 बज्यो

0: अनिमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले राज्यों मोबाइल बनाउनुहोस् स्कूटर जित्नुहोस्
1: मोबाइल बनाउनुहोस् टीवी तथा फ्रिज जित्नुहोस्
0: मोबाइल बनाउँदा अब मोबाइल नै जित्नुहोस्
1: राज मोबाइल सेन्टरमा आयो चिट्ठा मार्फत उपहार धमाका
2: हैन तिमीहरू पागल भयो कि क्या हो यो जमानामा नि यस्तो उपहार कसले दिन्छ
1: ल दाई तपाईँ पनि यति मात्र हो र राज मोबाइल सेन्टरमा मोबाइल बनाउँदा चिट्ठा मार्फत स्कूटर टीवी फ्रिज मोबाइल घडी इयरबोर्ड लगायत आकर्षक पुरस्कार पाइन्छ अनि जाने होइन त राज मोबाइल सेन्टर
3: हजुर हामी कहाँ सम्पूर्ण ब्रान्डका नयाँ मोबाइल पाउनुको साथै मोबाइल सम्बन्धी सम्पूर्ण सामानहरू होलसेल मूल्यमा पाइन्छ मोबाइल मर्मत सम्बन्धी सम्पूर्ण काम तथा मोबाइल लक अनलक पनि गरिन्छ राज मोबाइल सेन्टर सुगम टोल सिद्धार्थ ब्याङ्क अगाडि प्रोप्राइटर राजकुमार श्रेष्ठ सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9841122906